0: अधिक से अधिक परिवारों तक पाइप वाली रसोई गैस पहुंचाना है। देश में इस समय 1,74,00,000 घरेलू पीएनजी कनेक्शन हैं।
1: The United Arab Emirates has suspended all trade, commercial exchanges and financial transactions with Iran until further notice. UAE Foreign Ministry Communications Director Afra Al-Hameli said the decision is aimed at protecting regional stability and maintaining the integrity of the international financial system. The announcement comes after the UAE's air defense systems detected two ballistic missiles launched from Iran towards the Gulf. UAE Defense Ministry later said both missiles were assessed to have been targeting maritime navigation and fallen into the sea. UAE said it remains committed to dialogue, cooperation and regional integration as a means of promoting peace and stability. Iran has not yet commented on the UAE's allegations. However, Tehran has warned that the Strait of Hormuz will remain closed until a peace agreement is reached with the United States.
0: झारखंड सरकार ने अनियमितताओं के कारण रद्द की गई 44 भर्ती परीक्षाओं की सूची जारी कर दी है। इनमें वर्ष 2014 से झारखंड लोक सेवा आयोग और आउटसोर्स एजेंसी TSR डेटा प्रोसेसिंग प्राइवेट लिमिटेड TDPL द्वारा आयोजित परीक्षाएं शामिल हैं। रद्द परीक्षाओं में औषधि निरीक्षक, सहायक प्रोफेसर, उप जिलाधिकारी, दंत चिकित्सक, सहायक अभियंता, सिविल जज, अपर लोक अभियोजक और वन अधिकारी की परीक्षाएं शामिल हैं। सरकारी पॉलिटेक्निक में व्याख्याता, वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी, सहायक वन संरक्षक और अन्य प्रशासनिक तथा तकनीकी पदों की परीक्षाएं भी रद्द कर दी गई हैं। अनियमितता से जुड़े मामलों की सुनवाई के लिए उच्च न्यायालय से त्वरित अदालत गठित करने का भी अनुरोध किया जाएगा।
1: National Testing Agency NTA has revamped its examination team by removing 600 experts and onboarding new experts. In a social media post, Ministry of Education said that a four-tier question paper checking system will be put in place by NTA to strengthen the scrutiny of examination papers. The NTA will also induct 20 to 25 officials in the next 2 to 3 weeks. Further, NTA offices will be shifted to the new premises where security will be reinforced with CISF teams.
0: दिल्ली सरकार की भ्रष्टाचार रोधी शाखा ACB ने दिल्ली के पूर्व मंत्री और आम आदमी पार्टी नेता सत्येंद्र कुमार जैन, भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी और दिल्ली जल बोर्ड
2: like very much like yesterday, a bit tricky, but I think we just wanted to adapt quickly and not get too frustrated. But as soon as we got to know how the shuttle was moving, I think we could play our game better. And yeah, I think we were pretty aggressive today, which worked in our favor. So yeah, really happy.
3: विमेंस डबल्स में ही कविप्रिया सेल्वम और सिमरन सिंघी की जोड़ी को नौवीं सीट गैब्रिला स्टोवा और स्टेफानी स्टोवा ने आसानी से

0: सात 21-14 से शिकस्त दी। भारतीय जोड़ी ने माना कि पहले गेम में हड़बड़ी में गड़बड़ी हुई और लंबी रैली में विरोधी भारी पड़ी। दोनों ने ये भी माना कि फिटनेस पर काम करना होगा।
1: फर्स्ट गेम हम खेल रहे थे एंड रैलीज हो रही थी बहुत ज्यादा, बट हम पॉइंट नहीं कन्वर्ट कर पा रहे थे एंड हम लोग उनसे टफ फाइट भी दे रहे थे रैलीज में, बट वही हो रहा था कि एंड में पॉइंट उनको आ रहा था और फिर वो काफी लीड चली गई थी। हम लाइक इतना पेशेंटली नहीं खेल रहे थे, हम थोड़ा हड़बड़ी कर रहे थे पॉइंट लेने में। वेरिएशंस करने चाहिए थे, लाइक वो हमसे थोड़े ओल्डर है, स्ट्रॉन्गर है, उनका स्मैश बहुत जोर से आ रहा था जितना हम कंपैरेटिवली मार रहे थे। वी आर गोइंग टू ट्रेन वेरी हार्ड, एकदम रिग्रेस ट्रेनिंग करना है, फिट होना है, कंसिस्टेंट होना है कि इतना तो रैलीज होगा, इतने स्ट्रांग रहेंगे कि इजी पॉइंट नहीं मिलने वाला है। तो वी आर गोइंग टू वर्क ऑन अटैक और डिफेंस, दोनों में से एक चीज एकदम स्ट्रांग करना है।
0: उधर मिक्स डबल्स में अशित सूर्या और अमृता प्रमुथेश की जोड़ी ने तुर्की के इमरे सोनमेज और यासिमेन बेगताज के खिलाफ मैराथन मुकाबला किया, लेकिन तमाम जोर लगाने के बाद भी राउंड ऑफ 64 में शिकस्त झेलनी पड़ी।
2: Just feeling sad for that, for us, for the fans, for the crowd. We couldn't convert the game. Just feeling bad about it.
0: पहले गेम को भारतीय जोड़ी ने 21-16 से जीता, लेकिन ये लय बरकरार नहीं रह सकी। दूसरे गेम में कांटे का मुकाबला हुआ। दोनों में से कोई भी जोड़ी हार मानने के लिए तैयार नहीं थी। एक एक अंक के लिए कांटे का संघर्ष दिखा। इस गेम के रोमांच का अंदाजा स्कोर से लगाया जा सकता है। इस मैराथन गेम को तुर्की की जोड़ी ने 30-29 के स्कोर पर जीता। मैच तीसरे गेम तक पहुंचा। इस गेम में शुरुआती बढ़त भारतीय जोड़ी ने बनाई, लेकिन एक बार फिर लय बिगड़ी और कड़े संघर्ष के बाद 24-22 से शिकस्त मिली। तीन गेम का ये मुकाबला रोमांच की हदों को पार कर गया। परिणाम को लेकर सूर्या और प्रमुथेश ने कहा,
2: पहला सेट में तो अच्छा खेल रहे थे, जीत भी गए पहला सेट। सेकंड सेट वही कॉन्फिडेंस में गए और मैच पॉइंट भी थे, थोड़ा प्रेशर हो गया, कन्वर्ट नहीं कर पाया। वी वर प्लानिंग फॉर ईच पॉइंट दैट व्हाटएवर वी प्लान्ड डिडंट गो आवर वे, सो वी एंडेड अप डूइंग लिटिल एरर्स।
3: आई मीन वी आर हैप्पी दैट वी हैव प्लेड दिस वेल, बट देयर आर सम टेक बैक्स वी विल फोकस ऑन, लाइक when we have the match point we had to play safe, just inside, just focus on few easy points, not anything extra or trying to take a quick point, just those small take backs.
0: इससे पहले मिक्स डबल्स में ही रोहन कपूर और ऋतिका शिवानी गड्डे की जोड़ी भी कड़े संघर्ष के बाद कनाडा के जोनाथन बिंगसानलाई और क्रिस्टल लाई से 22-20, 19-21, 17-21 से हार कर टूर्नामेंट से बाहर हो गई। इस हार की निराशा भारतीय जोड़ी की बातों से महसूस की जा सकती है।
2: फर्स्ट गेम ठीक था, कंफर्टेबली जीत रहे थे। सेकंड गेम भी ठीक चल रहा था, थोड़ा बहुत स्ट्रेटेजी इधर उधर मिस हो गया एंड देन वी लॉस्ट अ बिट ऑफ टच, ट्राई टू प्ले अ लॉट ऑफ क्लोज पॉइंट्स एंड वहां पे वी स्लिप्ड आउट एंड एज अ रिजल्ट वी लॉस्ट द सेकंड गेम एंड देन ऑब्वियसली होम क्राउड है, हमारा स्टेडियम है, हमारा शहर है, थोड़ा प्रेशर आ गया स्टार्टिंग में दोनों को एंड देन ऑब्वियसली डिडंट स्टार्ट वेल एज अ रिजल्ट।
0: ये तो रही भारतीय खिलाड़ियों की बात, लेकिन टूर्नामेंट में दूसरे दिन बहुत ज्यादा उलटफेर नहीं हुआ। मेन सिंगल्स में दुनिया की तीसरी रैंकिंग वाले जोनाथन क्रिस्टी ने पहले दौर में जर्मनी के मैथियास किकलिट्स को 2 गेम में आसानी से शिकस्त दी। इसी वर्ग में 13वीं सीड सिंगापुर के लोकिन येव ने पहले राउंड का मैच कनाडा के ब्रायन यंग से आसानी से जीता। महिला सिंगल्स में 11वीं सीड जापान की नोजुमी ओकुहारा को पहले दौर में ही कोर्ट पर खूब पसीना बहाना पड़ा। तुर्की की ओसगे बैराक ने उन्हें मैदान पर खूब भगाया। हालांकि ओकुहारा 3 गेम का ये मुकाबला जीतने में सफल रही। पसीना तो 4थी सीड चीन की चेन यू फेई को भी खूब बहाना पड़ा। जीत के लिए हांगकांग की लोसिनियान हैप्पी ने उन्हें 3 सेट तक इंतजार कराया। अब तीसरे दिन मेन सिंगल्स में पहले राउंड में वर्ल्ड नंबर 1 शी यू की को हराने वाले आयुष शेट्टी का सामना अपेक्षाकृत कमजोर प्रतिद्वंदी श्रीलंका के दुमिंदु अबे विक्रमा से होगा। लक्सेन राउंड ऑफ 32 में अमेरिका के गैरेट टैन से भिड़ेंगे। वीमेन्स सिंगल्स में भारत के पदक की सबसे बड़ी उम्मीद और 9वीं सीड पीवी सिंधु कनाडा की वेन यू झेंग से खेलेंगी। 49वीं सीड कैनेडियन खिलाड़ी वेन यू झेंग के खिलाफ सिंधु का पलड़ा काफी भारी माना जा रहा है। उन्नति हुडा के लिए कनाडा की 13वीं वरीयता प्राप्त मिचेल ली के साथ मुकाबला कठिन हो सकता है, लेकिन उन्नति ने लय बरकरार रखी तो उलटफेर संभव है। मेंस डबल्स में 5वीं सीड सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की भिड़ंत स्कॉटलैंड के अलेक्जेंडर डून और एडम प्रिंगल से होगी। हरिहरन अमसा करुणन और एमआर अर्जुन का सामना 15वीं सीड कोरिया के कैंग मिन युक और की डांग जू से होगा। मिक्स डबल्स में 15वीं सीड ध्रुव कपिला और तनिषा क्रेस्टो मकाओ की जोड़ी लियांग लॉक चोंग और वेंग ची एनजी से खेलेंगे। उम्मीद है भारतीय खिलाड़ियों की सफलता का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। प्रोड्यूसर शहनवाज खान और एडिटर वंदना भारद्वाज के साथ इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम से शाहिद आजमी की रिपोर्ट के साथ मैं धर्मेंद्र मणि राजेश।

0: तो अभी आप सुन रहे थे बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप का वो मुकाबले की रिपोर्ट्स। अब एक छोटा सा ब्रेक, चल लौटते हैं।
1: दिल के तराने, गाने नए पुराने।

0: नॉन स्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा।
2: நேர்கள் இதுவரை கேட்டது பேட்மிண்டன் உலக கூட்டமைப்பின் 2026 உலக சாம்பியன்ஷிப் போட்டிகள் குறித்த தினசரி நிகழ்வுகள். ஹிந்தி மற்றும் ஆங்கிலத்தில் டெல்லியிலிருந்து அஞ்சல் செய்ய கேட்டீர்கள்.

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की भूरी भूरी प्रशंसा कर रही है।
1: वो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल, हर जगह है ये डटे हुए देश।

0: उमंग
1: CIET प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग
2: उमंग कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत है उमंग कार्यक्रम में।
3: और अजीत का भी नमस्कार और जोहार। मोताला महाराष्ट्र से विजय सुरलकर, रतनमाला सुरलकर ने सुविचार भेजा है। लिखते हैं,
2: घड़ी की सुइयां कभी नहीं रुकती, समय भी किसी का इंतजार नहीं करता। जो हर पल का सम्मान करता है, भाग्य भी उसी का साथ देता है। समय बहुत अनमोल है, उसकी कद्र करें।
3: बहुत बहुत धन्यवाद आपको इतने सुंदर संदेश के लिए, जिसने सच में हम सबको समय का महत्व समझाया। आइए अब सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो हमें पहला संदेश मिला है बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशनलाल देवांगन, कौशल्या देवांगन और हेमलता के साथ साथ डिंपल देवांगन।
2: ऊपरकोट बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, नगहत परवीन, शाहनवाज, सरफराज, फरदीन, सुहान, अरजान और अबान अब्बासी।
3: और माँ महामाया चौक मेघापारा लोरमी छत्तीसगढ़ से रामकुशल पटेल, संतोषी पटेल, दीपांशु पटेल, दिव्या पटेल, दीपांजलि पटेल, दीपक पटेल और टेकलाल पटेल।
2: छत्तीसगढ़ नगर पंचायत पलारी से प्रकाश वर्मा, प्रिंस वर्मा, निखिल वर्मा और यशस्वी वर्मा।
3: और करसोग जिला मंडी हिमाचल प्रदेश से हमारे चिर परिचित श्रोता योगेश ठाकुर जी।
2: सभी श्रोताओं को उमंग कार्यक्रम की ओर से आभार। इसी तरह से जुड़े रहिए हमारे कार्यक्रम उमंग से।
3: श्रोताओ, एक बार फिर से करते हैं आपका बहुत बहुत स्वागत हमारी आपकी सबकी जानी पहचानी श्रृंखला ये भी जानिए में।
2: जी
3: श्रोताओ, कल हमने चर्चा की थी कुछ ऐसे शब्दों की जो हैं तो हिंदी, संस्कृत और उर्दू के, लेकिन अब वे विश्व की कई भाषाओं में विशेषकर अंग्रेजी में इस्तेमाल किए जाते हैं।
2: आज एक बार फिर से हम लेकर आए हैं कुछ और शब्दों को जो हिंदी, संस्कृत, उर्दू और क्षेत्रीय भाषाओं से आए हैं, लेकिन अब दुनिया भर में प्रयोग में लाए जाते हैं। श्रोताओं, आपने बंगलो यानी बंगला शब्द अवश्य सुना होगा। शायद ही कोई सोचे कि ये शब्द भारतीय है। अक्सर ऐसा लगता है कि ये शब्द अंग्रेजी का है, लेकिन तथ्य कुछ और है।
3: जी श्रोताओं, तथ्य ये है कि अंग्रेजी का बंगलो शब्द बंगला या बांग्ला से निकला है।
2: जी।
3: इसका अर्थ था बंगाल शैली का मकान। ब्रिटिश अधिकारियों ने भारत में जब देखा कि भारत के बंगाल क्षेत्र में एक मंजिला चौड़े बरामदे वाले घर गर्मी के मौसम के लिए बहुत उपयुक्त होते हैं।
2: जी।
3: तो उन्होंने भी अपने रहने के लिए इसी प्रकार के मकान बनवाए और उन मकानों को उन्होंने बंगलो कहना शुरू किया। धीरे धीरे ये शब्द पूरे ब्रिटिश साम्राज्य और फिर पूरी दुनिया में फैल गया। तो श्रोताओं, जानकारी ये थी कि बंगला शब्द बांग्ला शब्द से निकला है।
2: जी, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन और अनेक देशों में आज भी जहाँ जहाँ ब्रिटेन का प्रभाव रहा, एक मंजिला स्वतंत्र मकान को बंगलो ही कहा जाता है।
3: आशा है श्रोताओं कि आपको हमारी आज की जानकारी जरूर बड़ी रोचक लग रही होगी, है ना?

0: आइए अब सुनते हैं एक और नया शब्द और वो शब्द है खाकी। श्रोताओं, क्या आपने कभी सोचा है कि पुलिस और सेना की वर्दी का प्रसिद्ध रंग खाकी कहाँ से आया?
1: तो हम आपको बता देते हैं, ये शब्द फारसी उर्दू के खाक शब्द से निकला है, जिसका अर्थ है धूल, मिट्टी या राख। तो जानते हैं कि अंग्रेजी भाषा में खाकी शब्द कहाँ से आया।
0: होता ये था कि भारत में अंग्रेज सैनिकों की सफेद वर्दी बहुत जल्दी गंदी हो जाती थी,
1: जी,
0: इसीलिए उन्होंने धूल जैसे भूरे रंग की वर्दी पहननी शुरू की। ये रंग इतना उपयोगी सिद्ध हुआ कि बाद में पूरी ब्रिटिश सेना और फिर अनेक देशों की सेनाओं तथा पुलिस ने भी इसे अपना लिया।
1: जी,
0: इसलिए आज खाकी केवल एक रंग ही नहीं बल्कि अनुशासन और सेवा का प्रतीक भी माना जाता है।
1: और अब बात करते हैं एक और बहुत प्रचलित शब्द की। शब्द है लूट। अंग्रेजी का लूट शब्द भी भारत से गया है। ये शब्द हिंदी के लूट या संस्कृत के लुंट शब्द से संबंधित है। इसका अर्थ है छीन लेना या लूट लेना।
0: श्रोताओ, अंग्रेजी शासन काल में अंग्रेज लोग अधिकतर जज, सैनिक या प्रशासनिक अधिकारी होते थे।
1: जी,
0: न्याय करने की प्रक्रिया में या प्रशासनिक मसलों में अंग्रेज अक्सर ये शब्द भारतीयों द्वारा सुनते थे।
1: जी,
0: उन्होंने इस शब्द को यानी लूट शब्द को अपनी भाषा में अपना लिया।
1: जी,
0: आज अंग्रेजी समाचारों, फिल्मों और पुस्तकों में लूट शब्द का प्रयोग पूरी दुनिया में होता है।
1: और अब लेते हैं दो और शब्द जिनसे सभी परिचित हैं। वो शब्द हैं योग और गुरु। दुनिया में शायद ही कोई ऐसा देश हो जहां योग शब्द न सुना हो। योग शब्द संस्कृत धातु युज से बना है, जिसका अर्थ है जोड़ना या मिलाना।
0: श्रोताओ, योग केवल व्यायाम नहीं बल्कि शरीर, मन और आत्मा के संतुलन की जीवन पद्धति है। संयुक्त राष्ट्र ने 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस घोषित किया, जिसके बाद ये शब्द पूरी दुनिया में और अधिक लोकप्रिय हो गया। इसी प्रकार से गुरु शब्द भी संस्कृत से आया है।
1: आज भारतीय अंग्रेजी में ये प्रचलन हो चला है कि किसी भी क्षेत्र में विशेषज्ञ के लिए गुरु शब्द का प्रयोग किया जाता है, जैसे टेक्नोलॉजी गुरु,
0: मार्केटिंग गुरु
1: या म्यूजिक गुरु।
0: श्रोताओ, दूसरी भाषाओं में शब्दों का यह स्थानांतरण भारत की ज्ञान परंपरा का विश्व पर गहरा प्रभाव दर्शाता है।
1: जी, तो प्रिय श्रोताओ, भाषा केवल संवाद का माध्यम नहीं होती बल्कि संस्कृति की वाहक भी होती है। जब किसी देश के शब्द दुनिया की दूसरी भाषाओं में पहुंचते हैं तो वे अपने साथ उस देश का इतिहास, संस्कृति और जीवन दर्शन भी लेकर जाते हैं। जिस भाषा के शब्द दुनिया अपनाने लगे, समझिए उस संस्कृति ने दुनिया को कुछ अमूल्य दिया है।
0: तो श्रोताओ, ये थी हमारी आज की जानकारी। तो अब हो जाइए तैयार आज के प्रश्न के लिए। हमारा आज का प्रश्न है, खाकी शब्द किस मूल भाषा से आया है? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
1: खाकी शब्द किस मूल भाषा से आया है?
0: आप अपना उत्तर हमारे IVRS नंबर यानी 8800440559 पर भेज सकते हैं। साथ ही साथ आप हमारे ईमेल यानी audio@ciet.nic.in पर भी अपने संदेश और विचार भेज सकते हैं।
1: एक्स, इंस्टा, फेसबुक और लिंक्डइन पर भी आप CIT NCERT को फॉलो जरूर करें। यदि आप NCERT की पाठ्य पुस्तकों को डाउनलोड करना चाहते हैं तो किसी भी सर्च इंजन में जाकर टाइप कीजिए NCERT बुक्स PDF। इस वेबसाइट से आप पुस्तकों को डाउनलोड कर सकते हैं
0: और इन्हीं पुस्तकों को आप ऑडियो बुक प्रारूप में भी NCERT यूट्यूब ऑफिशियल चैनल पर भी सुन सकते हैं।
1: जी
0: श्रोताओ, अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की, तो आइए सुनते हैं सबसे पहला कार्यक्रम, नदी का सफर।
1: कक्षा 7 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित इस कार्यक्रम में नदी की यात्रा के बारे में बताते हुए उसके उद्गम, प्रवाहित होने के क्षेत्रों, जलप्रपात बनने और अंततः समुद्र में मिल जाने के बारे में रोचक ढंग से बताया गया है।
2: नमस्कार साथियों, कलकल करती नदियाँ धरती की नसों में बहता हुआ जीवन है जो हर प्राणी को जीवन दान देती है।
3: नदियाँ प्रकृति का अमूल्य उपहार हैं, जिनकी गोद में न जाने कितनी मानव सभ्यताएं पनपी, फूली फली और विकसित हुई। नदियाँ न केवल जल का स्रोत हैं, बल्कि जीवन, संस्कृति और सभ्यताओं की आधारशिला हैं। अक्सर एक जिज्ञासा हमारे मन में उठती है कि नदियों का उद्भव कैसे हुआ, तो आइए सुनते हैं एक रोचक कहानी, नदी का सफर।
2: एक समय था जब पृथ्वी पर चारों ओर बर्फ ही बर्फ थी। ये लगभग 20 लाख वर्ष पहले की बात है। इस काल को हिमयुग यानी आइस एज कहते थे। धीरे धीरे पृथ्वी का तापमान बढ़ा

0: बर्फ पिघलने लगी थी और पेड़ पौधे भी उगने लगे थे।
1: इस तरह से हजारों वर्ष बीत गए। हिमालय पर्वत पर कहीं एक बर्फ की चोटी थी और वहीं रहती थी एक चंचल और चमकदार बर्फ की बेटी। नाम था हिमशिला। वो बहुत बड़े ग्लेशियर यानी हिमनद में रहती थी।
0: एक दिन सूरज ने मुस्कुरा कर कहा,
2: पुत्री हिमशिला, अब तुम्हें धरती पर उतरना होगा। वहां नीचे बहुत से जीव हैं, पेड़ पौधे हैं, उन्हें तुम्हारे जल की आवश्यकता है।
3: क्यों, मैं क्यों नीचे जाऊं? मैं तो यहाँ ऊपर बहुत खुश हूँ। बादल मेरे साथ आंख में चौली खेलते हैं। यहाँ सब कुछ कितना शांत है, मैं नीचे क्यों जाऊं?
2: पुत्री, ऊपर रहोगी तो केवल ठंडी बर्फ बनकर यहीं पड़ी रह जाओगी। हमें यूं ही पड़े नहीं रहना चाहिए, किसी के काम भी तो आना चाहिए।
3: अच्छा,
0: वो सोच में पड़ गई। फिर सूरज ने अपना ताप और बढ़ाया। फिर धीरे धीरे हिमशिला ने मन बना ही लिया पर्वत से उतरकर नीचे जाने का। वो एक छोटी सी धार बन गई और बहने लगी तीव्र गति से ढलान की ओर।
1: रास्ते में कई भूमिगत जलधाराओं ने भी यात्रा में उसका साथ दिया। उसकी गति और बढ़ गई। अचानक उसने महसूस किया, कोई उसे खींच रहा है। वो डर गई और बोली,
3: अरे, अरे ये कौन मुझे नीचे खींच रहा है?
0: पर्वत पर तपस्या करने वाले एक बूढ़े साधु ने हंसकर कहा,
2: पुत्री, ये पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल है जो तुम्हें नीचे खींच रहा है। डरो नहीं, धरती माँ तुम्हें अपने पास नीचे बुला रही है ताकि उसे जीवन मिल सके।
1: वो खुशी खुशी बहने लगी।
3: देखो, जरा देखो, अरे ये क्या, और भी इतनी सारी छोटी छोटी धाराएं बहती हुई आ रही हैं मेरी तरफ। हाँ देखो ना, मेरी तरफ।
1: ये सभी आपस में मिल गईं और सभी मिलकर बहने लगी। अब उन्होंने नदी का रूप धारण कर लिया था। कहने लगी,
0: सखी, अब हम सब मिलकर बहेंगी। हम सब एक दूसरे की सहायक हैं।
3: हाँ हाँ, क्यों नहीं, हम सब मिलकर बहेंगी।
0: हाँ।
1: अब मिलकर बहने के कारण उनकी बहने की ऊर्जा और बढ़ गई। फिर क्या था, छोटी सी जलधारा ने अब एक विशाल नदी का रूप धारण कर लिया। मार्ग में कई पत्थर मिले, चट्टाने मिली, मार्ग रोकने की भी कोशिश की, लेकिन नदी को तो अब बस एक ही धुन थी,
3: मुझे तो बस आगे बढ़ना है, आगे और आगे।
1: एक दिन की बात है, बहते बहते नदी एक बहुत ऊंची चट्टान के पास आ गई। नीचे देखा तो बहुत गहराई थी। उसे बहुत डर लगा। क्षण भर के लिए वो रुक गई।

0: और सोचने लगी,
1: हाँ अब क्या करूं, अब क्या करूं, अब मैं क्या करूं।
0: उसने दाएं बाएं देखा, तब पर्वत ने कहा,
2: कूद जाओ ना।
1: कूद जाऊं?
2: डरो मत।
1: हाँ?
2: धरती माता तुम्हें अपनी बाहों में ले लेंगी।
1: अच्छा तो कूद जाती हूँ। कूद गई।
0: लोगों को खुश देखकर नदी को बड़ी खुशी हो रही थी। और हाँ एक बात और है, इतनी ऊंचाई से गिरने के बाद भी वो रुकी नहीं, अपने लक्ष्य की ओर बहना जारी रखा। कई बार रास्ते में या पहाड़ों पर वर्षा हुई तो उसका जल प्रवाह और भी बढ़ गया।
3: फिर क्या था, भला भूमिगत झरने भी क्यों चुप रहते, उन्होंने भी पूरा योगदान दिया और वो भी शामिल हो गए नदी की इस रोमांचक यात्रा में।
0: वो आगे बढ़ती रही, रास्ते में उसने कई गांव देखे जहां लोग और पशु पक्षी प्यासे थे। पेड़ पौधे उसकी प्रतीक्षा कर रहे थे, सारे खेत सूख गए थे। नदी बोल उठी,
1: अब समझी, सूरज दादा ठीक ही कहते थे, मेरा बहना दूसरों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। जहां जहां मैं जाती हूँ वहां हरी हरी घास उगाती है, पेड़ खुशी से झूमने लगते हैं, पशु पक्षी प्रसन्न हो जाते हैं, लोग मुझे माता कहते हैं, मेरी पूजा करते हैं। न जाने कितनी सभ्यताओं को मैंने अपनी गोद में फलते फूलते और पनपते देखा है, लेकिन कई बार मुझे बहुत दुख होता है जब लोग मुझ में कूड़ा फेंकते हैं, शहरों की प्रदूषित नालियां तक मुझ में बहा देते हैं, और मैं बीमार हो जाती हूँ।
3: जब वो सागर तक पहुंची तो सागर ने कहा,
2: पुत्री तू इतनी दूर कैसे आ गई?
1: माँ धरती का गुरुत्वाकर्षण मुझे यहाँ तक बहा कर ले आया।
2: पुत्री तू बहती रही इसीलिए जीवन चलता रहा।
1: अच्छा,
2: तू रुकती तो हा? जीवन चक्र ही रुक जाता। चलती रहो चलती रहो चलती रहो।
1: मैं चलती रहूंगी। हाँ मैं हमेशा चलती रहूंगी।
3: चरैवेति यही तो जीवन है।
0: चरैवेति नदियों का संदेश यही महान, चलते रहना कर्तव्य पथ पर, हो यही बस तुम्हारे जीवन की पहचान।
4: अभी आपने सुना कार्यक्रम नदी का सफर। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, ध्वन्यांकन विनीत कुमार शर्मा, कलाकार पूनम एस कुदुसिया, सुनील लोहिया, शशांक शर्मा और बबीता त्रिपाठी, आलेख अजीत होरो, संपादन एवं निर्माण कुसुमलता। यह कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया।

0: शिक्षा की डिजिटल आधारिक संरचना, पीएम ई विद्या कार्यक्रम और आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत एनसीईआरटी शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार की एक पहल। दीक्षा, दीक्षा।
1: और आइए अब सुनते हैं अगला कार्यक्रम, शीर्षक है हेलेन केलर।
2: इस कार्यक्रम में दिव्यांग अमेरिकी महिला हेलेन केलर के जीवन और दिव्यांगता से उनके संघर्ष और विजय की गाथा का सप्रसंग उल्लेख किया गया है और बताया गया है कि किस प्रकार वे विश्व की करोड़ों महिलाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गईं।

0: आज हम आपको मिलवाते हैं एक ऐसे व्यक्तित्व से जो पूरे संसार के लिए प्रेरणा स्रोत है, जिनका नाम है हेलन केलर।
1: हेलन केलर का जन्म 27 जून 1880 में अमेरिका में हुआ था। जब ये 2 साल की हुई तो बहुत बीमार पड़ी और
2: डॉक्टर, मेरी बच्ची ठीक तो हो जाएगी ना?
3: मिसेस केलर, मुझे बेहद अफसोस है, पर हेलन अब कभी देख, बोल और सुन नहीं पाएगी। हिम्मत रखिए मिसेस केलर, हिम्मत रखिए।
0: हेलन की शिक्षा उसकी मां के लिए अब एक चुनौती बन गई, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। हेलन की देखरेख और शिक्षा के लिए उन्होंने एक अनुभवी अध्यापिका को चुना, जिनका नाम था मिस सेलिवन।
1: आओ हेलन, मेरे पास आओ। हाँ, इधर। मैं हूँ सेलिवन। आज से मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। हम दोनों मिलकर खेलेंगे, बहुत सारे काम एक साथ करेंगे। धीरे धीरे तुम्हें सब समझ में आ जाएगा। अच्छा देखो, मेरा हाथ पकड़ो। हाँ, ऐसे। दोस्त हूँ ना तुम्हारी। शाबाश। इस तरह एनी सेलिवन ने हेलन को पढ़ाना शुरू कर दिया। जो भी शब्द हेलन को सिखाना होता वो उसके हाथ पर लिख देती थी। इस तरह पढ़ते हुए हेलन ने सबसे पहले गुड़िया शब्द सीखा। हेलन, आओ, आज तुम्हें एक शब्द लिखना सिखाती हूँ। हेलन है गुड़िया जैसी, तो हम लिखते हैं तुम्हारे हाथ पर गुड़िया। लाओ हाथ दो। गुड़िया, गुड़िया, गुड़िया, गुड़िया, गुड़िया।
0: अचानक एक दिन बाग की सैर करते हुए पानी का नल देखकर मिस सेलिवन के मन में एक विचार आया।
1: अरे, ये पानी का नल? हाँ, अगर पानी का स्पर्श कराकर हेलन के दूसरे हाथ पर पानी लिखूं,

0: तो कितना अच्छा होगा। अभी देखती हूँ। ये रहा पानी का नल। हेलेन, हेलेन, अपना हाथ मुझे दो। हाँ, शाबाश। अच्छा, अब अपनी हथेली खोलो। ऐसे, हाँ। अच्छा, अब मैं एक शब्द लिखूंगी तुम्हारी हथेली पर। देखो, मैं लिख रही हूँ, पानी। हाँ हाँ, शाबाश। पानी। पानी। एक बार फिर कोशिश करो। हाँ।
1: यूं शुरू हुआ हेलेन का पढ़ना। अब तो वो चीजों को छू छू कर इशारे से उनके नाम पूछने लगी।
2: जल्दी ही वो अपनी अध्यापिका के मुंह और गले को छूकर बोलना भी सीख गई, यहाँ तक कि वो संगीत का भी आनंद लेने लगी।
0: मिसेस केलर
3: जी,
0: हेलेन तो अब बहुत कुछ सीख गई है। संगीत का आनंद भी लेने लगी है। आप तो खुद इतना अच्छा पियानो बजाती हैं। आज हेलेन के लिए मेरे लिए पियानो बजाइए ना।
3: जरूर, मैं अभी बजाती हूँ।

0: सिर्फ इतना ही नहीं, हेलेन उभरे अक्षरों यानी ब्रेल लिपि को पढ़ने लगी। वो अंग्रेजी के अलावा लैटिन, फ्रेंच और जर्मन भाषाएं भी सीख गई।
1: यही नहीं, वो तैराकी, घुड़सवारी और नाव चलाने में भी रुचि लेती। हेलेन ने अमेरिका के प्रसिद्ध महाविद्यालय रेड क्लिफ से स्नातक परीक्षा विशेष सम्मान से उत्तीर्ण की। हेलेन ने आत्मकथा लिखी जो एक प्रसिद्ध पत्रिका में छपी। दुनिया की 50 से ज्यादा भाषाओं में इसका अनुवाद हो चुका है।
0: बाद में उन्होंने 10 किताबें और लिखी। वो अंधेपन, बहरेपन और उनसे जन्मी समस्याओं के बारे में अखबारों में लेख लिखती रही। अमेरिका और विदेशों में अंधेपन के लिए काम करने वाली संस्थाओं से वो जुड़ गईं।
1: उन्होंने दुनिया के कई देशों की यात्राएं की। सभी जगह हेलेन केलर को भारी सम्मान मिला। सन 1955 में वो भारत आई। दिल्ली में विशाल जनसभा में उन्हें सम्मानित किया गया।
0: '64 में हेलेन केलर को अमेरिका का सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रदान किया गया।

कैलर की सफलता का रहस्य था तमाम कठिनाइयों के बीच आनंद की तलाश। हेलेन अपने प्रशंसकों के लिए प्रेरणा का एक अमर स्रोत थी, है और हमेशा रहेंगी।

0: अभी आपने सुना कार्यक्रम हेलेन केलर, और श्रोताओं इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अब अपने मित्र अजीत को
1: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम यानी कुसुमलता,
0: जगबंधु और मंजू जी के साथ आज्ञा दीजिए।
1: नमस्कार।
2: उमंग, उमंग, उमंग, उमंग।
3: மதுரை எஃப்எம் 103.3 மற்றும் ராமேஸ்வரம் எஃப்எம் 100.9
4: எஃப்எம் ரெயின்போ, இசையோடு என்றும் நீங்கள்.